0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, एक जज्बो खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: 88.4 नेटवर्क
1: रेडियो अमर नेटवर्क मन रंग अमर अमर
2: बाय। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मौजर असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिंस दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा शफाफ बेदाग गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर ले। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345923286 0।
3: आसमानी हर्बल ऑयल 100% ऑर्गेनिक न्यू हेयर ग्रोथ। खाने के फवायद, जिस्म की इजाफी चर्बी और मोटापे को कम करे, ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे, मर्दाना कमजोरी को दूर करे, हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे, मैदे की गैस जलन तेजाबियत बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे, बवासीर होनी उबादी कब्ज और मतली में मुफीद है। मालिश के फवायद, सर दर्द कमर दर्द पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात, बालों को लंबा घना और सिया चमकदार बनाए, खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए, बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे, वालिद के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है, जिस्मानी थकावट जहनी सुकून हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिएं। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट अस 0345923286 0।
2: आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम कुदरती अज्जा से तैयार करदा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम का रोजाना इस्तेमाल आपके चेहरे को बनाए तरोताजा। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे, कील मुहासे, छाइयां और आंखों के गिर्द स्याह हल्के खत्म करे, आपके चेहरे गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मौजर असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिंस दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा शफाफ बेदाग गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर ले। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345923286 0 0300 585 8481।

आपका शैम्पू अटक में कहां से मिलेगा? मी इमरान. इमरान भाई दा सिकारू के छे अलता छे कम दे चिकम जमुंगा ख कॉस्मेटिक्स से स्ता सुपजे के या फार्मेसी दा या दा सिकारू का बिलाल फार्मेसी अलवर शो होते नो टेंशन प्रोडक्ट रा तरह का बिलाल फार्मेसी खुडेरा मशहूर है अगर बैंक सरल अलतन रावल शाजी मुंग द बुनीर असद ज़ादा आओ मासरा लायकत अली आओ सुहेल जान नास्ती डेरे ज्यादा मना नको द बुनीर दा वालेकुम अस्सलाम. दा बाबी मा लिखले वा खमामू बाबी रे कना ठीक शो उस ते बाबी सही लिखले रे खा उस ठीक शो करे तो हो सके गम कर मने कर दा हो गस गप लगो. सलाम भाई संग मी तन्हा द सलाम खान टोलो तो सलाम वालेकुम अस्सलाम ओ लो दा दुमरा मैसेज शाजी संग है ओचे लतीफ जमा खावन दे जका वर्त सलाम को वही जार वही दासिर खुखते वही जार ब्या खुद रे जला वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम लतीफ सोना बख्तवर खजे पर एडुम दा सलाम न कर सिंग बख्तवर खजे दे दा सलाम सिंग मुबारक शाह भाई सर निशा यमा द दोबियान प्रोग्राम जबरदस्त बल मैसेज राखले अगेन साधिया भाई सस्ता सो फेसवाश खेराबाद की चासर मिलावेगी टोलो सर खेराबाद के टोलो सर वर्षे नुमाख ले रहा दर्द मिलाओ बेटी.

0: हाँ जी गान और दुनको तस्वीरें रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दिस में दिन और दुनिया ये भी नतर दो बजे पूरी दा प्रोग्राम ता सुपर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम बांदी और जी जियो कॉल तरफ ता गुरु जी प्लेन में जरा सुखती थी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। संग है मुझकी से
0: खैर दी जी तब सेहत खदी जी
1: खैर मैं जी तब सुन स्कूल दा बटा ग्राम में खबर तुम
0: जी
1: मत दियो खत्म हो खैर वाल सो खैर
0: सी शी पर जी
1: सी द पर जो फोर कर हम कना आ गए ना खोस न दे आ गए पर जो
0: फोर कर ठीक है ठीक है मत सी सही दे जी सही दे।

0: सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बड़ा ग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: ग्रानो रिदुन को द अमन रेडियो FM 88.4 बटाग्राम दे दा वक्तासो जमुंगा इस्लामी नशरियात आवरे।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात, इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा।
3: ग्रानो रिदुन को द अमन रेडियो FM 88.4 बटाग्राम दे दा वक्तासो जमुंगा इस्लामी नशरियात आवरे।

T20 ब्लाइंड एशिया कप काल 2018 शेड्यूल ऐलान करे दे। T20 ब्लाइंड एशिया कप काल 2018 शेड्यूल मुताबिक द नवंबर में आस्ते 16 मिनट न तरशलम नेटे पूरे बांग्लादेश की लुबेगी। बांग्लादेश पर अवल जल बांधे द ब्लाइंड क्रिकेट एशिया कप मेजबानी कवी और टूर्नामेंट के पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान टीमों ने ऐसा आखली। एशियन गेम्स वुमेन क्रिकेट मुकाबलों के अविलीय सेमीफाइनल के श्रीलंका पाकिस्तान ता आतो विकेटों सरा माते ओवर करेगा और फाइनल ता रसेदले दे। पाकिस्तान लाड़खा पाकिस्तान वुमेन्स टीम अविलीय बैटिंग कवलो सरा मुकर रशल अवरुनो के सलोर लुबगाड़ो पर नुकसान योसल ओवा अविया रंजू ने जुड़कड़ियो। पदे के शवाल जुल्फिकार पंजोस बलून बांधे सलोर पंजोस, आयशा जफर सलवेश बलून बांधे यो अविया, कप्तान फातमा सन्ना दुलस बलून बांधे शल रंजू ने जुड़कड़ियो। शरीकऊ द मौसम हाल। मौसमियातो मुहकमे तरमखा तेरो सलीरिश घंटों के करक बनू लकी मरवत और टांग पाव शासिमों की ज्यात न ज्यात दर्ज हरारत वे देर और कम न कम सलीरिश दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड करे शवेरे। पहावा की दनमय तनसो 50% और द अवा रफ्तार 15 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड करे शवेरे। मौसमियातो मुहकमे लखवा सबाबा करक बनू लकी मरवत और टांग पाव शासिमों के मौसम खुश्क और जनी इलाकों के पासमान खाल खाल रेजी वलेबल अड़खता सबाबा करक बनू लकी मरवत और टांग शासिमो के अनमर सभा शहर 2 मिनट दफा सा अष्पक बजे सेर वही और मकाम स्वर 10 मिनट दफा सा अष्पक बजे बा डूबेगी। दाऊ द रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क मुहिम खबरों नोरा मुहिमो खबरों और पारा रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क सराव से उस्माता द न्यूज टीम सरा राका इजाजत दलोई अल्लाह पामान।

वालेकुम सलाम मारिया मेरी तरफ से सलाम कबूल करो अलीश भाई माँ वालेकुम सलाम अनसफर संगई सलाम में कबूल कर फैजा अल्लाह मुबारक शाह अनसाय माँ वाय तासु लव खवाय दम खबर अदनन सबा दूर की वल्ला जे दुमरा तकड़ा अल्लाह खुशाल साता देर वक्त बाद दामे उखते जे जिनके मतलब जनाना लव कवी नु लव खुश है रे दागुर दिस दे इंसान सेहत जुड़वी ता सड़ी खुमलेशला वदा खबर अदा

मिनावालो प्रोग्राम पर हानौरी अयान मानूर मुस्कान बुशरा उमेरा कामरान सलमान कामरान नोमान अदनान अमाद बाबा महक मानूर प्रोग्राम औरी

छठी जमात से बारहवीं जमात तक बच्चियों के लिए अलहदा सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन के लिए तजुर्बाकार फीमेल स्टाफ। वी आर राइजर्स। महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। पता याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, नजबैंक ऑफ खैबर, बटग्राम। फोन नंबर 0356535207।